0: रेडियो सारंग 107.8 FM
1: रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगदा बदक इत्ते तुलु प्रसार

0: सर्जन? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।